आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

ये लोग जिन्होंने रिसालत मुहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं, इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे।

0: क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और उसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आते हैं। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई उसके फैसलों पर नजर सानी करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और अनकरीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो। कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है और फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ ला